आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।

0: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
1: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है। आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: नंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, उमंग कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: आज के युग में हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है पर्यावरण की रक्षा, क्योंकि यही हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन जी का।
2: बड़ा बम चौक मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय और साथ साथ बेबी किट्टू।
3: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने और अर्चना ताई गोंडाने।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
3: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। आशा है आपको पिछली जानकारियाँ अवश्य पसंद आई होंगी। हमने बात की थी
2: पेड़ पौधों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में और उनके बारे में कई रोचक बातों को जाना था। अजीत जी, अब ये भी जानिए कि यात्रा में आगे चलते हैं, तो क्यों ना आज बात की जाए किताबों की।
3: विमलेश जी, आपने तो सचमुच मेरे मुंह की बात ही छीन ली। यही तो मैं भी कहने वाला था
2: जी।
3: मुझे एक बेहद प्रसिद्ध कविता की पंक्तियाँ याद आ रही है।
2: तो फिर देर कैसी, सुनाइए ना कविता।
3: हाँ, कविता इस प्रकार से है, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की।
2: क्या बात है, इसको आगे मैं कहती हूँ। आज की, कल की, एक एक पल की, ये सफदर हाशमी जी की प्रसिद्ध कविता है। तो श्रोताओं, आज करते हैं बात किताबों के रोचक इतिहास की।
3: जी हाँ श्रोताओं, किताबों का इतिहास या पुस्तकों का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास जितना ही रोचक है
2: जी।
3: आज जो हम सुंदर रंग बिरंगी पुस्तकें हाथ में लेते हैं ना, इसके पीछे लगभग 5000 वर्षों की लंबी यात्रा है। तो विमलेश जी, कहाँ से करें शुरुआत।
2: अजीत,

0: इसके लिए हमें दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता में चलना होगा। ये तो बता दें श्रोताओं को कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी।
1: जी, मेसोपोटामिया की सभ्यता आज के इराक में विकसित हुई थी। श्रोताओं को ये जानकर आश्चर्य होगा कि तब पुस्तकें मेसोपोटामिया में मिट्टी की थी।
0: मिट्टी की, और वो भी पुस्तकें, ये तो बड़ी विचित्र बात है।
1: जी, बात तो विचित्र है ही। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया की पहली पुस्तकें वास्तव में आज की तरह की पुस्तकें नहीं थी, बल्कि वे मिट्टी की तख्तियां थीं।
0: जी,
1: तो विमलेश जी, अब आपकी बारी है ये बताने की मेसोपोटामिया की सभ्यता के निवासियों को क्या कहते थे और वे मिट्टी की पट्टियों पर लिखते कैसे थे।
0: जी, मेसोपोटामिया के निवासियों को सुमेरी या सुमेरियन कहते थे। ये लोग मिट्टी को गीला करके उसे आज की स्लेट की तरह एक आकार देते थे और फिर उस पर धातु की कील या हम कह सकते हैं नुकीली कलम से लिखते थे।
1: जी,
0: इसलिए मिट्टी की पट्टियों पर लिखे वर्णों को पुरातत्वविदों ने कीलाक्षर भी कहा है।
1: जी, कीलाक्षर यानी कील से लिखे हुए अक्षर।
0: जी,
1: ये तो सचमुच बड़ा रोचक होता जा रहा है। लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि क्या ये मिट्टी की पट्टियाँ टिकाऊ होती थी।
0: बिल्कुल होती थी। पहले उन लिखी गई उन पट्टियों को वो धूप में सुखाते थे, फिर उन्हें भट्टी में पकाया जाता था। ऐसी मिट्टी की पट्टियां हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह जाती थीं।
1: श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए कि यदि आपको 300 पृष्ठों की एक पुस्तक पढ़नी हो
0: जी,
1: और हर एक पृष्ठ एक भारी मिट्टी की पटिया हो, तो
0: ऐसी कल्पना करना ही हमें अपने आप में आज से 5000 वर्ष के पूर्व के काल में ले चलता है। अजीत जी, ये जानना भी बहुत रोचक रहेगा कि सुमेरी लोग इन मिट्टी की पटियाओं या क्ले टैबलेट्स पर लिखते क्या थे, जरा श्रोताओं को भी तो बता दें।
1: जी विमलेश जी, ये जानना तो सच में बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि इससे हमें उनकी सभ्यता और इतिहास की बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। मजेदार बात यह है कि उनके द्वारा लिखी गई हजारों मिट्टी की तख्तियाँ आज भी पढ़ी जा सकती हैं।
0: जी,
1: इनमें वे लिखते थे व्यापार का हिसाब किताब, राजकीय अभिलेख, सुमेरी कानून और संहिताएं,
0: युद्धों और विजयों का विवरण और राजाओं की उपलब्धियाँ, कहानियाँ और कविताएं। उन्होंने महाकाव्य भी लिखे जिनमें एपिक ऑफ गिलगामेश बहुत प्रसिद्ध है।
1: श्रोताओं, आपको बता दें कि कीलाक्षरों को क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है और 19वीं शताब्दी में ही विद्वानों ने कीलाक्षरों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया भर के संग्रहालयों में ये कीलाक्षर प्रतियां सुरक्षित हैं और वे आज भी हमें आज से 5000 वर्ष पूर्व पुरानी सभ्यता के लोगों के सामाजिक, शैक्षिक और दैनिक जीवन की जानकारी देती हैं।
0: जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। और अब सुनिए आज का प्रश्न, जिसका उत्तर छिपा हुआ है आज की ही जानकारी में। प्रश्न है,
1: आज का प्रश्न है, कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है।
1: तो हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप हमारे प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
1: तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है अरावली की कहानी।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों को रेगिस्तान बनने से रोकने में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें।
4: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढला

0: यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
1: यस मैम।
0: आह क्या बात है
2: मैम।
0: हाँ बेटी।
2: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
0: बिल्कुल कहा।
2: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं। क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
0: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते? पहाड़ी कहते हैं।
2: जी पहाड़ी।
3: अरे वाह। अच्छा लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
0: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों जानना है ना इसके बारे में?
1: यस मैम।
0: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
1: अच्छा।
0: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
1: अच्छा।
0: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
1: अच्छा, मैंने भी देखा है।
3: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
4: मैम अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
0: बिल्कुल जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
5: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
0: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
1: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
3: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
0: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
4: जी मैम,
2: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
3: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
0: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गयी।
5: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
0: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
1: सॉइल इरोजन,
0: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही है।
3: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
0: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
1: हाँ, जी मैम।
2: यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
2: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
5: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती

0: क्यों, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
1: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
1: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
1: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
1: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
1: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद मैम।
4: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
1: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
4: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीष शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है जंगल के साथी।
5: इस कार्यक्रम में पशु पक्षियों की भूमिका के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि एकता में ही बल है, बिना किसी आपसी मेलजोल के हम किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार जंगल के पशु पक्षियों ने मिलजुल कर असंभव से लगने वाले कार्य को पूरा किया।
4: जंगल के साथी।
6: दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ, सुनाओ भी कहानी। चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
7: अरे सुना

0: सुनो ध्यान लगा कर सुनो सुनो कान लगा कर सुनो सुनो ध्यान लगा कर सुनो सुनो।
1: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन। क्यों जी दीपू कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
0: शाबाश। लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
3: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं। अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश। एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं।

0: क्यों, लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा? क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
1: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
0: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा। हम दोनों मिलकर खेलेंगे, घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
2: राम जी, अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना। क्या हुआ?
2: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे, फिर दादी माँ?
2: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
2: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
0: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
0: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
2: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
0: यानी खरगोश, हिरन और मोर।
2: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
0: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
2: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
0: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम। खुशियाँ बांटेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
2: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना
1: और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
1: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है। आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: Welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. श्रोताओं, बाजार विशेष की खबरों पर चर्चा के लिए आज स्टूडियो में हमारे समक्ष आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक सिद्धार्थ सिंह. सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: प्राची नमस्कार, गुड इवनिंग अर्जुन.
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुनें सुर्खियां.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस डिक्लाइन. सेंसेक्स फॉल्स ओवर 550 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स एट 24,052. Government releases the first index of services production for 19 subsectors and global crude oil prices rise.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट. सेंसेक्स 561 अंक लुढ़का. निफ्टी 24,052 पर बंद हुआ. केंद्र सरकार ने 19 सब सेक्टर के लिए सर्विस प्रोडक्शन का पहला सूचकांक जारी किया और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़े.
0: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और श्रोताओं, अब आइए रुक करते हैं और जानते हैं कि आज दिन के अंतराल में हमारे दोनों ही प्रमुख शेयर सूचकांकों ने, यानी कि घरेलू शेयर बाजार ने, कैसा प्रदर्शन किया. देश के प्रमुख शेयर सूचकांक 0.7% की गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 561 अंक गिरकर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 159 अंक लुढ़ककर 24,052 पर आ गया. निफ्टी के विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक में लगभग 0.5% की गिरावट आई और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में लगभग 1% की गिरावट आई.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड अराउंड 0.7% लोअर टुडे. Sensex fell by 561 points to close at 77,055, while Nifty declined 115.

0: 9 points to settle at 24,052. In the broader market on the National Stock Exchange, the Nifty Mid-Cap 100 Index slipped 0.44%, while the Nifty Small-Cap 100 Index fell nearly 1%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 25 कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई. सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में HCL Tech लगभग 4.5%, इंडिगो 2.3% और बजाज फिनसर्व में 2.2% की गिरावट आई. वहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों की अगर बात करें तो भारती एयरटेल 1.5% से अधिक, TCS 0.8% और सन फार्मा में लगभग 0.5% की बढ़त हुई.
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 20 out of the 25 sectors ended in the negative zone. Among the top losers, mid-small private banks Quality Tilt dropped 1.92%, Realty fell by 1.91%, and PSU banks lost 1.79%. In contrast, utilities jumped 0.7%, metals rose by 0.63%, and healthcare added 0.53%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 1,501 companies advanced, 2,737 companies declined, and 195 companies remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 58 पैसे कमजोर होकर 96 रुपए और 20 पैसे पर बंद हुआ. उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 101.10 पर कारोबार कर रहा था. सिद्धार्थ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यानी कि हॉर्मूज का जलडमरू मध्य एक मछली के कांटे की तरह गले में फंसा हुआ है. शायद इसी वजह से हम देख पा रहे हैं कि बाजार की प्रतिक्रिया इस तरह से है.
2: नहीं प्राची, आपने बिल्कुल ठीक कहा. जब से मैं कहूँगा वेस्ट एशिया क्राइसिस जो शुरू हुई, उसके बाद से जो बाज़ार में एक हम कह सकते हैं कि जो एक उथल पुथल या वॉलेटिलिटी बनी हुई है, तो वो अभी भी कायम है. और मुझे लगता है जो फिर से जो एक एग्रीमेंट हो गया था अमेरिका और ईरान के बीच, जो युद्ध विराम हुआ उसके बाद एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक एग्रीमेंट हो गया. 60 दिन का युद्ध विराम हुआ और ये हुआ कि उसके उस दौरान बातचीत करके एक डिटेल फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा. लेकिन शायद वो सब होता उससे पहले ही फिर से एक बार जो है स्थिति खराब हो गई है और अमेरिका ने दोबारा जो है ईरान पर आक्रमण कर दिया है. और ईरान भी डटा हुआ है और ईरान ने भी, मतलब आज की डेट में अगर हम ये कहें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी ये कहा है कि अब उनकी तरफ से भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फिलहाल बंद है. ईरान ने तो अपनी तरफ से जो है रोक लगाई दी है. ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि संडे के बाद से जो आवाजाही है, जो जो तेल के जो जहाज़ हैं या गैस या तेल के जो भी जहाज़ हैं, तकरीबन हमने देखा है एक दो ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए जहां ईरान ने अटैक भी किया, उसमें कुछ भारतीय भी हताहत हुए हैं और भारत ने इस पर बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है. तो मुझे लगता है और वही कारण है कि जो बाज़ार पे भी ये उसका इस अनिश्चितता, इस इंस्टेबिलिटी का जो है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है.
1: जी सिद्धार्थ, पिछले कुछ हफ्तों में बाज़ार में हमने बढ़त देखने को मिली. अब क्योंकि माहौल थोड़ा सा अनिश्चित एक बार फिर से होता हुआ नज़र आ रहा है, तो उस हवाले से क्या आज और इन बीते कुछ सत्रों में मुनाफा वसूली देखने को मिली है? क्या आज भी हमें उसका प्रभाव, मुनाफा वसूली का प्रभाव देखने को मिला है?
2: नहीं, देखिए जब ऐसा पीरियड होता है तो ऑब्वियसली लोग जिसको कहते हैं ना कि अपना पैक हंटिंग, मतलब अगर जो निवेशक है उसको ऐसे मौके आते हैं जब उसको लगता है कि मैं इस लेवल पे कुछ अपना जो है प्रॉफिट जो है बुक कर लूं और आगे शायद मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दोबारा मैं बाज़ार में आऊँगा. तो शायद और बाज़ार में आप आते भी इसीलिए हैं क्योंकि हर व्यक्ति का जो निवेशक का एक एम होता है कि कहीं ना कहीं, तो वो एक कारण है. और मुझे लगता है ऐसी अनिश्चितता का जो माहौल है तो बाज़ार कहीं ना कहीं अभी ऐसा लगता है कि रेंज बाउंड हो गया. और जब से वेस्ट एशिया, चूँकि अब तकरीबन जुलाई का मिड जुलाई में है, तो कहीं ना कहीं ये बात भी तय है, आप चाहे रिजर्व बैंक की तरफ से जो उनके एस्टिमेट्स हो इस साल की जो जीडीपी फोरकास्ट है उसमें भी उन्होंने भी उसको घटाया है, और इन्फ्लेशन को लेके सारी दुनिया में चिंता है, तो कहीं ना कहीं वो बाज़ार में भी कहीं ना कहीं उसका असर दिख रहा है. शायद इसलिए निवेशक इस स्टेज पे उनको लगता है कि शायद इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट आगे दिखे, क्योंकि आप अमेरिका में भी देखेंगे तो ये एक डर बना हुआ है कि शायद वहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट्स, वहाँ की फेड रिज़र्व जब अभी इस महीने के अंत में वो बैठेगा तो शायद हो सकता है. तो इस सब का कहीं ना कहीं एक मार्केट पे कहीं ना कहीं एक निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है और शायद इस वजह से निवेशक शायद थोड़ा

0: So I think we need to, for some time, we need to keep a watch before taking a final call on these things.
1: सिद्धार्थ, हम अगर ऑटो सेक्टर की बात करें, अगर हम क्षेत्र विशेष बात करते हैं, तो ऑटो सेक्टर में भी आज हमने देखा कि गिरावट आई है. किस तरीके से ये जो वैश्विक स्तर पर जो एक परिदृश्य अभी बना हुआ है, उसका जो एक रिपल इफेक्ट हम डोमेस्टिक मार्केट में देखते हैं और फिर हम एक सेक्टर स्पेसिफिक में देखते हैं, तो इसे आप कैसे देखते हैं कि क्या इसके कारण रहे होंगे, क्या सेंटिमेंट होगा इसके पीछे?
0: नहीं प्राची, जहाँ तक ऑटो सेक्टर की बात है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से ऑटो सेक्टर पे वेस्ट एशिया क्राइसिस हो. ठीक है, मैं ये मानूंगा कि जहाँ तक तेल की कीमतें हैं उनमें बहुत इजाफा हुआ है
1: जी
0: और ऑटो सेक्टर का उससे एकदम एक सीधा
1: जी
0: जुड़ाव है.
1: जी
0: लेकिन उसके बावजूद अगर आप जो लास्ट फिगर्स रिलीज हुए थे ऑटोमोबाइल सेल्स के, वो उनमें जो तेज़ी है वो बरकरार है, चाहे वो एक्सपोर्ट की हो चाहे वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, जो भी डोमेस्टिक मार्केट में जो बिक्री होती है गाड़ियों की, चाहे वो टू व्हीलर्स हो, थ्री व्हीलर्स हो, चाहे फोर व्हीलर्स हो, इवन कमर्शियल व्हीकल्स का जो डेटा है वो बहुत ही रोबस्ट है. तो मुझे नहीं लगता कि एक दिन की गिरावट को हमको किसी तरह के ट्रेंड को मान के चलना चाहिए. और मुझे लगता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में हिंदुस्तान बहुत अग्रणी देशों में से है, और मुझे लगता है इसमें हमारी अभी भी जो जो मजबूती है वो पूरी तरह से जो है बरकरार है.
2: Aviation stocks have also taken a hit today because international travel might be impacted by what's happening in West Asia. Clearly, looking at travel and tourism and all the sectors connected to it have been affected. Why has realty fallen by 2%? Is it something to do with disposable income and investment income of IT professionals in the US?
0: अर्जुन, आई वुड से एज फार एज योर आंसर टू एविएशन स्टॉक्स, ऑब्वियसली द आंसर इज़ वेरी स्ट्रेट. इफ वेन एवर क्रूड प्राइजेस गो अप, ऑब्वियसली इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द ETF प्राइजेस, एविएशन टर्बाइन. सो देयर ऑल्सो इन एटलीस्ट फॉर आर डोमेस्टिक फ्लायर्स, द गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ हैज़ सेट अ बेस प्राइस फॉर ETF, एंड बियॉन्ड दैट देर इज़ अ सब्सिडाइजेशन बाई द गवर्नमेंट फॉर द एयरलाइन कंपनीज. बट येस, ऑब्वियसली वंस द ETF प्राइजेस गोज अप, ऑब्वियसली अक्रॉस द वर्ल्ड एंड ऑल्सो देर इज़ प्रेशर ऑन आर ओन करेंसी ऑब्वियसली. सो दिस विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द टूर एंड ट्रैवल कंपनीज. बट कमिंग टू योर अदर क्वेश्चन वॉज ऑन
2: Well, I said about realty because
0: या
2: it's also
0: रियलिटी
2: taken a hit and
0: या
2: it's all dependent upon incomes of those who are looking
0: या
2: to buy, get into
0: सो
2: housing.
0: कमिंग टू रियलिटी, येस, वॉट यू सेट इज दैट इज़ वन ऑफ द रीजन. प्लस ऑल्सो देर इज़ अ फियर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स गोइंग अप. सो इफ देर इज़ अ फियर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, इफ़ यू लुक एट दो RBI फॉर आर ओन सेंट्रल बैंक, येस दे हैव स्टिल मेंटेन दैट दे स्टिल मेंटेन अ दे हैवन चेंज द स्टांस. सो दे हैवन गिवन एनी इंडिकेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट गोइंग अप. एंड एज ऑफ नाउ वॉट द इन्फ्लेशन फॉर अस रिमेन्स विद इन द बैंड 2 to 4%, वॉट एवर द बैंड, 2 प्लस 4 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2. सो आई थिंक दैट इज़ नॉट एन इशू. येस, फॉर ऑब्वियसली इफ यू लुक एट द रियलिटी स्टॉक्स ऑन ए बिगर स्केल, येस देर इज एन इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ दैट.
1: श्रोताओं, आइए अब रुख करते हैं एशिया के बाजार की तरफ. प्रमुख एशियाई शेयर बाजार आज मिले जुले रुख के साथ बंद हुए. चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स 1.3%, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.7%, जापान का निकेई और हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 0.5% से अधिक, तथा सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स लगभग 0.5% ऊपर बंद हुआ. वहीं ताइवान का ताइएक्स लगभग 1.5% फिसला.
2: Move on to the next story now. Government today released the country's first trial index of services production, ISP, for 19 subsectors, providing for the first time a monthly measure of short-term activity in the formal services sector. The inaugural index, with 2024-25 as a base year, covers April 2026 and accounts for nearly 60% of India's services sector. The Ministry of Statistics and Program Implementation described the subsectoral ISP as a major milestone in improving the measurement of India's services sector and strengthening the country's statistical system. It said the comprehensive overall index of service production will be introduced after evaluating the stability of the trial series and expanding its coverage. The first set of data points to broad-based growth in the services sector. 14 of the 19 subsectors recorded double-digit growth in April this year compared to the corresponding month last year, while almost all remaining sectors also registered positive growth. With services dominating our GDP calculation, how do you see the ISP actually giving it a further boost in terms of output and productivity? And of course, the related employment that goes with it.
0: Arjun, I think it's a very welcome step, especially because till now we had an index of industrial production.

0: 0.07% up at $86.69 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 2.5% up at $80.10 per barrel when reports last came in. Last time there was a rollback of hostilities was when oil prices crossed $100. What is going to be the U.S. reaction to this rise in international crude prices?
1: See, I don't think this increase in prices is happening only because of U.S. reaction. The announcement by Donald Trump shutting down the Strait of Hormuz, and he's talking about a 20% tax. And on the other side, Iran saying we will not allow any movement or would not allow this kind of, you know, tax to be imposed. And if at all anything, it has to be a tax, it has to be a very minimal amount. So I think till there is an agreement between the two sides, I think we should see this these kind of levels, and which is not a good news for India.
0: And what is our imports like right now? Do we have the strategic petroleum reserves to counter this? We're already taking steps in the form of blending of petrol so that, you know, prices are affordable and it is accessible to the market.
1: Arjun, we have already taken steps, but yes, and especially the government had taken, as you talked about, ethanol. Plus, we've also diversified our sources from where we import our energy needs. But even then, the price going up is not a good news for us, and anything below 80 is good for us. But still, government of the day has tried to shield the consumer from these high level, and we haven't seen much increase in retail prices except one or two times when the prices were increased.
0: Moving on to the bullion market. In the Indian bullion market, 24 karat gold was trading 2.05% higher at 1,43,460 rupees per 10 grams, while silver was trading 3.37% up at 2,25,080 rupees per kilogram a short while ago.
2: Multi-commodity exchange में अगस्त अनुबंध वाला सोना 1.7% बढ़कर 1,42,748 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि सितंबर अनुबंध वाली चांदी 3.2% बढ़कर 2,24,757 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. क्योंकि समय की नजाकत है, मगर एक संक्षिप्त में मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगी.
1: नहीं देखिए, गोल्ड एक मैं जो बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले भी कि जो कन्वेंशनल रूल्स थे वो इस आज के टाइम में उनमें जो है कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं चैलेंज हो रहा है. जब भी कोई क्राइसिस आती थी पहले देखा जाता था गोल्ड के दाम ऊपर जाते थे, लेकिन आज आप देखेंगे गोल्ड के दाम नीचे आ रहे हैं, जबकि दुनिया में पूरी तरफ अनिश्चितता. शायद उसका एक कारण है क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है, साथ साथ शायद कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हो रही है गोल्ड में. तो मुझे लगता है मतलब ऐसे टाइम पे अभी फिलहाल जो ट्रेंड है, मुझे लगता है गोल्ड प्राइसेस इसी लेवल्स पे रहेंगे अगर ये हॉस्टिलिटी बनी रहती है. बिकॉज अमेरिका में एक ये भी फियर है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो ऊपर ही रहने वाले हैं, तो लोग जो है गोल्ड से सिक्योरिटीज में मूव कर रहे हैं.
2: जी धन्यवाद सिद्धार्थ कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए.
1: धन्यवाद.
0: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices decline. Sensex falls over 550 points. Nifty settles at 24,052. Government releases the first index of services production for 19 subsectors. And global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता आज से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले में जनगणना का स्वगणना चरण 17 से 31 जुलाई तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉ. विशाल कुमार ने बताया कि पहली बार लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जनगणना का विवरण भरने की सुविधा दी गई है। ये पोर्टल प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा।

0: जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला कलेक्टरों के साथ 10वां पेयजल संवाद आयोजित किया। बैठक में जल जीवन मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। नेपाल और भारत ने कल ऊर्जा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। काठमांडू में नेपाल के ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्री बिराज भक्त श्रेष्ठ ने भारत के ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल और अतिरिक्त विदेश सचिव मुन्नू महावर के साथ बैठक की। नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और अन्य दो रूसी अंतरिक्ष यात्री कल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कजाकिस्तान से सोयुज MS-29 अंतरिक्ष यान के जरिए उड़ान भरी। अनिल मेनन की ये पहली अंतरिक्ष यात्रा है। उनका ये मिशन लगभग 8 महीने का होगा और वे अप्रैल 2027 में पृथ्वी पर लौटेंगे। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम के एस्बेस्टन में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45 ओवर और 2 गेंदों में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में अब से थोड़ी देर बाद टेक्सास में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। New Delhi has said that it is closely observing the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi yesterday, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz.
2: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
1: India also expressed deep concern at the attacks on 2 vessels, MT Albahia and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz yesterday. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the deputy chief of mission of the embassy of Iran in New Delhi was summoned yesterday by the ministry. Responding to a question on protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, or POJK, Mr. Jaiswal said the ongoing protests in POJK are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights, and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and the United Kingdom will come into force from today. Simultaneously, the Agreement on Social Security, referred to as the Double Contribution Convention, DCC, will also come into effect the same day, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi yesterday, Commerce Secretary Rajesh Agrawal described the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement as a defining milestone in India's trade journey. The Election Commission has extended the schedule of ongoing special intensive revision of electoral rolls in Haryana and Andhra Pradesh by 10 more days. According to the Commission's revised schedule, the booth-level officers will now visit house-to-house in both the states till the 24th of this month, which was earlier scheduled till yesterday, the 14th of July. It added that the draft electoral roll will be published on the 31st of this month. India's largest global textile event, BharatTex 2026, began at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday. Union Textiles Minister Giriraj Singh inaugurated the event. Speaking to media, Mr. Singh said BharatTex is

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वह पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता आज से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले में जनगणना का स्वगणना चरण 17 से 31 जुलाई तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉ. विशाल कुमार ने बताया कि पहली बार लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जनगणना का विवरण भरने की सुविधा दी गई है। ये पोर्टल प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कल इंडोनेशिया की राष्ट्रीय ऊर्जा परिषद के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने किसानों और घरों तक स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाने में भारत की उल्लेखनीय प्रगति से प्रतिनिधिमंडल को अवगत कराया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने ईरान के सामने हाल की घटनाओं को लेकर अपनी कड़ी चिंता और विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और कई भारतीय घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के जरिए समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता आज से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले में जनगणना का स्वगणना चरण 17 से 31 जुलाई तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉ. विशाल कुमार ने बताया कि पहली बार लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जनगणना का विवरण भरने की सुविधा दी गई है। ये पोर्टल प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक आज से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। ये बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में 4 अहम मुद्दों, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, श्रम बाजार को औपचारिक बनाना और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी और समावेश को बढ़ाने पर चर्चा होगी। नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और अन्य 2 रूसी अंतरिक्ष यात्री कल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कजाकिस्तान से सोयुज MS-29 अंतरिक्षयान के जरिए उड़ान भरी। अनिल मेनन की ये पहली अंतरिक्ष यात्रा है। उनका ये मिशन लगभग 8 महीने का होगा और वे अप्रैल 2027 में पृथ्वी पर लौटेंगे। फीफा फुटबॉल विश्व कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला टेक्सस में फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक स्पेन ने 2-0 से मैच में बढ़त बना ली है। भारत ने इंग्लैंड

पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने 4 विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 16 जुलाई को कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्ध लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिवसीय इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले में जनगणना का स्वगणना चरण 17 से 31 जुलाई तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉ. विशाल कुमार ने बताया कि पहली बार लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जनगणना का विवरण भरने की सुविधा दी गई है। ये पोर्टल प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के

0: இனிய ராகம் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை உஸ்தாத் சல்மாத் அலிகான், சஃபாத் அலிகான் ஆகியோரின் பாட்டு, தொடர்ந்து பண்டிட் ஹரிபிரதா சௌராசியா அவர்களின் புல்லாங்குழல் இசை ஆகியவை கேட்டோம். தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள், டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார். ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ரத்னா பாண்டே. भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नज़र रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नज़र रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि

0: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। उन्होंने बताया कि ईरान के उपमिशन प्रमुख को तलब कर भारत ने हाल की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि पूरे घटनाक्रम में एक भारतीय नागरिक की जान गई है और कई अन्य भारतीय घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि यह पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता आज से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। दो दिवसीय इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले में जनगणना का स्वगणना चरण 17 से 31 जुलाई तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉ. विशाल कुमार ने बताया कि पहली बार लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जनगणना का विवरण भरने की सुविधा दी गई है। ये पोर्टल प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य के 6 जिलों में 37,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार इस वर्ष बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे अधिक प्रभावित जिला उत्तर लखीमपुर है, जहां 35,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम के एस्बेस्टन में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45 ओवर और 2 गेंदों में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने 4 विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 16 जुलाई को कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। New Delhi has said it is closely observing the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi yesterday, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randeep Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce to the Strait of Hormuz.
0: We are closely following the developments that are happening

0: எஃப்எம் கோல்டில் இனி தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வைஷ்ணவி. भारत ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। उन्होंने बताया कि ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत ने हाल की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि पूरे घटनाक्रम में एक भारतीय नागरिक की जान गई है और कई अन्य भारतीय घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन

0: मुद्दों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज राजस्थान के जयपुर में आयोजित होने वाले विधायी गौरव यात्रा पूर्व और वर्तमान सदस्यों का सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ये समापन सत्र राजस्थान विधानसभा के 75वें वर्षगांठ समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता आज से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिवसीय इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले में जनगणना का स्वगणना चरण 17 से 31 जुलाई तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉ. विशाल कुमार ने बताया कि पहली बार लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जनगणना का विवरण भरने की सुविधा दी गई है। ये पोर्टल प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य के 6 जिलों में 37,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार इस वर्ष बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे अधिक प्रभावित जिला उत्तर लखीमपुर है, जहां 35,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंगम के एस्बेस्टेन में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45 ओवर और 2 गेंदों में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and United Kingdom comes into force today. Simultaneously, the agreement on social security, also referred to as the Double Contribution Convention, DCC, also comes into effect, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero duty access to 99% of the tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi yesterday, Commerce Secretary Rajesh Agrawal described the India-UK CETA as a defining milestone in India's trade journey. New Delhi has said that it is closely following the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce to the Strait of Hormuz. India also expressed deep concern at the attacks on 2 vessels, MT El Bahia and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz yesterday. Responding to a question on protest in POJK, Mr. Jaiswal said,